Japji sev ikonkar satnam kartapur nirbo nirvera kalmut ajuni sevang guru prasad jap at sach shuga sach heavy sach nanako sibi sach soche sochna hove je sochi lakvar jupe jupna hove je lae raha liftar bukya bukna utri je van purya var sesyana palak hoye taikna chalenal kiv sachyara hoye kiv gure tutte pal hukam rajai charna nanak likyanal hukam iho vanakar hukam nake ajai hukam iho vanji hukam ele varyai hukam iho tam nich hukam e duk sukapaye ekna hukam e vakshish hukam e sadababaye hukam e anda sapko bahar hukam na koi nanake hukam e je bujeta hove kehe na koi gave ko tan hove kisetan gave ko tachan nishan gave ko gun varya yachar gave ko vikya vikamichar gave ko sastare tanke gave ko jile firde gave ko jape di sedur gave ko vehe harahadur katena katena avetot kat kat kati kot kot kot teda dele te tat pai juga jugantar kai kai hukam hi hukam chala e rao nanak vese ve parvao sacha saev sacha nae vakya vao apar ake mange de ide dat kare datar fer ke age rakye chati se darbar moke bolan bolie je sundare piar amrit vela sacha nao variai vichar karmi ave kapara nadri moktuar नानक वे जानिए सत आपे सचियर तपे न जाए कि तन होय आपे आप निरंजन सोय जिनसे व्या तिम पाया मान नानक गावे कुन निदान गावे सुने मरवा किया बाओ तुप पर हर सुख ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख वे रसमाय गुरीश्वर गुर गौर परम गुर कृपा की माय जय हो जान आका नाही कहना कत न जाए गुरे के देवु जाय सवना जिया कह दाता सोमे वसन जाय तीरथ नावा चेत सपावा विम्बन के नाय करी चेति से तु पाए वे खा विंग में मिल ले माधविश करण जमर महान जय गुर की एक सुनी गुरे के देवु जाय सवना जिया कह दाता सोमे वसन जाय चे चुक चारे आर जा होर न सुनी होए नाव खंद विच चानिए ना सले सब कोय चंग नाव रकाए के जस किरे चकले जेति स्नर न आवे ता पर न पूछे के किता अंदर किता का दोषी दोष त्रे नानक ने गुन गुन करे गुणवंतिया गुंदे तेहा कोय न सुचे जेति गुन कोय करे सुनिय सिर पर सुनात सुनिय तरत लखस सुनिय तीपलो पताल सुनिय तो न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनिय तू पाप का नस सुनिय ईश्वर परम इंद सुनिय मोत सलामंद सुनिय जो जुगत तनवेद सुनिय सत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिय तू पाप का नस सुनिय सत संतो ज्ञान सुनिय असत का इश्नन सुनिए पर पावे मन सुनिए लगे सहेष्टियन नानक भगता सदा विगास सुनिए तू पाप का नर सुनिए सरागना के गास सुनिए शीर पी पतिशाओ सुनिए अंदर पावे राव सुनिए हाथों वे असकाओ नानक भगता सदा विगास सुनिए तू पाप का नर मने की कर कहे न जाए जे को कहे कछे पछताए राकर काम न लेक नहार मन कव करम विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मन कोय मने सुर तो वे मंबुत मने सगवन राखी सुत मने मोचनता न काय मने जम के सत न जाय ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मन कोय मने माग तक न पाए मने पत्सियों पर गजाए मने मग्न चले पंथ मने तरम सती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जने मन कोय मने पावे मोक्त द्वार मने परवारे सदार
Mane tare tare guru sik, mane nan kave navik, esa nam narinjan hoi, jeko manjane mankoi, panch parvan, panch pardan, panche pavetir keman, panche soe tarajan, panche ka gurek tian, jeko kahe kahe vichar, karteke karne na esamar, dol taram kya kaput, santok taram kya kisut, Jeko buche hove sachyar, tale upar ke tavar, darti hor tare hor hor, tiste var kare kamjor, jee jaram ka kenav, savana likya buri kalam, eo leka leka jane koe, leka lekya keta hoi, kete tan siari orup, kete ta jane kumkut, kita pasawe kukuvao, tiste hoe laktariao, Kurit kavanka vichar parina java ekovar jyotu epave sai balikar tu sada salaman nirankar asanka japa sanka bao asanka pucha sank taptao asankuryamu vedpat asank chokmurai udas asank bagungyan vichar asank sati asank datar asank surmu vaksar asank mulivlaetar Kurit kavankaha vichar parina java ekovar jyotu epave sai balikar tu sada salaman nirankar asanka murara makor asanka jor haram makor asanka marka jaye jor asanka albahatya kamai asanka papi pap kar jaye asanka kuryar kure firai asanka malech malvakai asanka dinta sikare var Nanak nishkaye bichar parina java ekovar jyotu epave sai balikar tu sada salaman nirankar asankana vasankata vagamma gamma sankalo asankare sirbara hoy akri nam akri sala akri gyangi kunga akri lekam bolamban akri san sanjovekan jenele kete senai Je formae te pae, je takita te tanao, vena vena e kotao, kurit kavanka vichar, parina java e kovar, jyotu e pave sai balikar, tu sada salaman nirankar. Bari e hattare tande, pani tu te hutesket, mut paliti kapara hoe, desa bulna e odoe, Bariya ma papa ke sang oto penna ve ke rang puni papiya karnai kar kar karna likne jao ape picha pe bikao nanak ke hukamiya bo jao tirta tya datan je ko pave tir ke man sunye manye makita bao antarga tira mannao sagun tere minae koe vingun kite vagadna hoe Sua sat pani varmao, sat suan sada manchao. Kavan sovela vat kavan, kavan jet kavanavar. Kavan siruti mao, kavan jeto akar. Velna paya pantaji, hove lek puran. Bagana payo kadia, jen lekal lek kuran. Tite varna yogi jane, rupmao na koe. Jakarta siti kosaje, ape jane soe. Kiv karaka kiv salai, kivarni kiv jana, nanaka kosa koake ekalek siana, badasai badinai, kita jaka hove, nanak jeko apo jane, ake jana soe, patala patala gasagas, orkurk baltake, ekahanekebat, sehesatar kahankateva asunka ekdat, leka hoeta lekye, leke hoe venas, Nanak bada akye ape jane ap, salai salai tisar na paya, nadariya ve pave samal na janiye, samal sa sultan keri seti maldan, kiri tur na hoveni jitis manu na visare, antana sifti ke na ant, antana karne de na ant, antana ve kesyo na ant, antana jape kya manmant, Antana jape kitakar, antana jape paravar, ankarankate valai, take antana pae jai, eo antana jane koe, vahuta kaye vahuta hoe, padasae buchatao, uche upar uchanao, evra huche hove koe, tisuche ko jane soe,
चेवर आप चने अपाप नानक नदरी कर मिदत बहुत कर्म मिखिया न जाए पादा ताता थी न तमाए केते मंगे जो तपार केतिया कर नई विचार केते कब तुते विकार केते ले ले मुकर पाए केते मुरे काय काय केते दुपुक सदमार ए विदात्री दातार बन कलासी बाने होए हो राख न सके कोय जे को कहे अकन पाए ओ जाने जितिया मुकाए आपे जाने आपे दे आके सेवे के जिसनो बख्शे सफसला नानक पातशाही पतिशाओ अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल बंदार अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल बारे अमूल असमाय अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवन अमूल बख्शीश अमूल निशान अमूल करम अमूल फुरमन अमूल अमूल अख्या न जाए आका कल्ले वल्लाय आखे वेद पत पुराण आखे परे करे बध्यान आखे बर में आखे इंद आखे गोबी ते गोबिंद आखे ईश्वर के सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दारम आखे देव आखे सरम अंजन सेव केते आखे अकन पाए केते कर कर तु जाए केते कीते होर करे ताक न सके के जेवत भावे तिरत होए नानक जन सच सोए जे को आके बोल बिदार तलिखिया सिर गवार गवार सोदर के हा सोगर के हा जित सरत समले पाजे नारायण के शंकर केते गावन हारे केते रज परिस्यो कायं केते गावन हारे गावे तूनो पन पनी वे संतर गावे रज तरम द्वारे गावे चित कुपत लिख जाना लिख लिख तरम विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे ईद दसन वेदे देव दिया दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सद विचारे गावे जति सती संतो की गावे वीर करारे गावन परन परन रखी सा जुजु वेदा नाले गावे मोहनियम मन मोहन सुर मच प्याले गवन रतानु पारी तेरे असत्य रत्नाले गावे जोत महावंसूरा गावे कर विचारे गावे कंदमलदार वरबंदा कर कर रखे तारे सेतु नु गावे जोत पावन रेते तेरे वगर साले होर केते गावन से मिचि न आवन नानक या विचारे सोई सोई सदा साहेब सच सचि नाई हे वी होसी जय रजासी रचना चिन रजाई रंगी रंगी वती कर कर जिनसी माया जिनु पाए कर कर वे के किता अपना जीव तिस की बरियाए ज्योतिष भावे सोई कर सी हुक्म न कर जाए सो पति साओ सहा पति साहेब नानक रहन रजाए मुंद संतोख सरम पचोली दियांकी करी विभूत किंता कार क्वारी काया जुगदंता परतीत आई पंति सगल जमति मंज जगजीत अदेत से अदेस आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस भुगत किया अंगिया बंदार कर कर बजे नाद अपना नाति सब जाकी हृत सबा रसाद संजोग विजोग दुखा चलावे लेके अवे बाग आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस एक माए जुगत बियाए तिन चले परवन एक संसारी एक पंदारी एक लाहे दीवन जीव तिस भावे थवे चलावे जीफो वे फुरमन ओ वे के ओ न नदर नावे बाउताए ओ विदन आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए कोवेस आसन लोए लोए बंदार जोत सपावे सोए कवर कर कर वे के सिर जनहार नानक सच्चे की सच्ची कर आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस एक दूजी वाला कोवे लख होवे लखवीस लख लखेरा आखिए एक नन जगदीस इरत पत पारिया छुरिया हो इकीस सुंगला आकाश की किता आये रीस नानक नदरी पाये कुरे कुरे तीस
Akan jor jupena jor, jorna manga dena jor, jorna jivan manna jor, jorna rashma mansor, jorna surti gyan bichar, jorna jugadishate sansar, jisa jor karbe ke soe, nana ke hutam nishna koe, rati ruti titi var, pavan paniya kari patal, tisvistarti rati taram sal, tisvistya juga kerang, Tinkenan anekenant, karmi karmi hoe vichar, sacha ap sacha darbar, tite sohan panch parvan, nani karam paven nishan, kach pakae o te pae, nanake a jape jai, daram kanka e o daram, gyan kanka ako karam, kete pavam pani vesantar, kete kan mahesh, kete varme kari kari, rup karam keves, Ketya karam pumi mirkete, kete dupadesh, kete isha surkete, kete mandaldes, kete sidvatnat kete, kete devives, kete devtaran sunkete, kete ratasamanda, kete akani, kete abani, kete patnerinda, kete asurti seva kete, nana kyantana ant, gyan kan gyan parchant, tite nat kol otanant, Saram kan kiva nirup, tite kari kari eva utanup, takya gala katya na jai, jeko kahe kache pashatai, tite kari esara manbut, tite kari esara sada kisut, karam kan kiva nijor, tite hor na ko e hor, tite jod maha bansur, timme ram kriya barpur, tite sito sita me mamai, take rup na kat na jai, Nao maranata ke jai, jinke rama se manmai, tite bhagadvase ke lo, garyanan sacha mansoi, sach kanda se nirankar, kar karve ke nadranahal, tite kandamaldar varbanda, jeko kaheta antana ant, tite lo akar, jivji hukam tave tivkar, jivvigase kar vichar, nana katana karasar, Jat pahara dira sunyar, eran madve takyar, bokala kantaptao, banda bao amritidal, karya shavasakshi taksal, jinko nadataram tinkar, nanak nadri nadran hal shlok, pavana guru pani pata mata darata mahata, divasrai toedai daya kele sagala jagata,

to sit behind the guru.

could have grown

not a

माधवे भज दिन नित रैनी, जन्म पदारत जीत हर सरनी रहाओ। करत बिकार दो खर जारत, राम रतन रिद थिल नही दारत। बारन फेकन संग औद बहानी, जय जगदीश की खत नही जानी। सरन सिमरत अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। जय जगदीश रखी खत नही जानी, सरन सिमरत अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सुई सुही फिफ्थ महल, योर लाइफ इज स्लिपिंग अवे बट यू नेवर इवन नोटिस। यू आर कॉन्स्टेंटली एंटैंगल्ड इन फॉल्स अटैचमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। Your life is slipping away, but you never even notice. You are constantly entangled in false attachments and conflicts. Meditate, vibrate constantly, day and night on the Lord. You shall be victorious in this priceless human life, in the protection of the Lord's sanctuary. Pause. You eagerly commit sins and practice corruption, but you do not enshrine the jewel of the Lord's name within your heart even for an instant. Feeding and pampering your body, your life is passing away, but you do not experience the state of victory of the Lord of the universe. So enter the sanctuary of the all-powerful, unfathomable Lord and Master. O God, O searcher of hearts, please save Nanak. So enter the sanctuary of the all-powerful, unfathomable Lord and Master. O God, O searcher of hearts, please save Nanak.